0: इंडिया एफएम नेटवर्क पर।
1: हम जशन रहमत में पाण वापसि चुका आहियूं। प्रोग्राम जशन रहमत मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां। हिन वक़्तु जशन आमद रसूल 12 रबीउल जो ॾींहुं आहे। ऐं तव्हां असां मुस्लमान लाइ ईद जो ॾींहुं आहे ऐं तव्हां सां असां वरी बि साईं अहसान लाइ महिमान आहे।

पंहिंजो सीरत नबी सलाहु आल वसलम जन जे हवाले सां थोरी असांखे मालूमात ॾींदा ऐं असांखे थोरी दिलि असांजी जेको

خود محمد تشریف لائے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے۔

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ओडेरी वन कोयल आया डाढो मां दुखोयल
1: ओडेरी वन कोयल आया डाढो मां दुखोयल।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अल्लाह रब्बुल इज्जत पंहिंजे हबीब करीम इमामुल अंबिया हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे रहमत करे मोकिलियो।
1: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
0: रहमत जो सफ़र जो ॻोल्हे जो रहमत जो मिसाल दुनिया में मिली नथो सघे।
1: हक़ीक़त आहे
0: अहिड़ी रहमत जो समंदर जेको दुनिया में मिसाल मिली नथो सघे। ईअं रहमत भरे पैगंबर खे अल्लाह तबारक वताल जल जलालू ख़ातम नबीन करे मोकिलियो, नबीअनि सभिनि जी पुॼाणी करे मोकिलियो। असांजे पैगंबर हज़ूर अनवर सलाहु वसलम खां बाद में कोई बि दुनिया जे तख़्त ते नओ नबी पैदा नथो थी सघे। असांजो इमाम अंबिया हज़ूर अनवर सलाहु वसलम जन आख़िरी नबी आहे।
1: हज़ूर
0: अनवर सलाहु वसलम जन जी विलादत बासादत 571 ईस्वी में अप्रैल महीने जे अंदर सूमर जे ॾिहाड़ ते बाक पटल जे टाइम ते थी, जेको अॼु 12 रबी अल अवल जो ॾिहाड़ो आहे।
1: सुभान अल्लाह।
0: ऐं 12 रबी अल अवल जो ॾिहाड़ो तव्हां ई असांखे इहो सबक थो ॾिए त हज़ूर अनवर सलाहु वसलम जन जीअं ज़िंदगी गुज़ारी आहे उसवे हसना हुनजी ज़िंदगी आहे, हुनजा इख़लाक ई जेके सुहिणा आहिनि, उन्हनि इख़लाकनि खे असां अपनाईंदासीं त हीअ दुनिया में बि असां सुरखू थी रहंदासीं ऐं क़यामत जे ॾियारे महशर जे मैदान में नफ़्सी नफ़्सी ॻाल्हि में अलाह रब्बुल इज़्ज़त तव्हां ई असांखे सुरखरू करे उथारींदो।
1: सुभान अल्लाह।
0: हज़ूर अनवर सलाहु वसलम जी ताबेदारी करण सां, हज़ूर अनवर सलाहु वसलम जी इताअत करण सां अलाह तबारक वताल जल जलाल जो कुर्ब हासिलु थींदो आहे। छो जो अलाह तबारक वताल जल जलालू क़ुरान पाक में फरमायो आहे, मुंहिंजा पैगंबर तूं पंहिंजी उम्मतनि खे चयो जेकॾहिं मां अलाह सां मुहबत रखणु चाहिनि था त तूं मोहम्मद कलीम जी ताबेदारी कर, पोइ अल्लाह मां हुननि सां मुहबत रखंदुमि ऐं समूरा ज़िंदगी जा गुनाह माफ़ करे छॾींदुमि।
1: सुभान अल्लाह। सर वॾी महिरबानी सर, हाफ़िज़ साईं अलाह सां मां ख़ुशि कंदो, लख कुर्ब तव्हां असांखे जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां तव्हां असांखे टाइम ॾिनो सर। वॾी महिरबानी सर, वॾी महिरबानी जी। हा समय असांजो हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ असां सां लाइन ते हुयो, जंहिं सीरत नबी सलाहु वाली वसलम जे शान में कुझु ॿुधायो ऐं असांजी दिलि रूह ठारे छॾियईं ऐं हाणे नाते रसूल मक़बूल सलाहु

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: का भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही रब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03009319667।
1: आया नबी मेरा, आया नबी, आया नबी मेरा।
2: जी है FM नेटवर्क, आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ जीए FM पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए जीए FM नेटवर्क पर।

0: फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण तो तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो सखर जो मोहतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िला जारी आहिनि चार सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM पंज सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD ॿिनि सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA ख़ासि सहूलियतूं स्कॉलरशिप्स मौजूद ॿिनि सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकमल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे यादि रखो सीट्स महदूद आहिनि तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस OT हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबितो 07115635642 ऐं 03108166111
1: मौसर होम्योपैथिक इलाज अब सखर शहर में डॉक्टर आजम अली मुगल के साथ मेदे की खराबी गैस बदहजमी कब्ज खूनी उबादी बवासीर अर्कुन नसा घुटनों जोड़ों और कमर दर्द गुर्दों की पथरी समेत मौतदित अमराज के लिए मुस्तनद होम्योपैथिक तशखीस और इलाज हर मरीज का इंफरादी मुआयना मुकम्मल रहनुमाई और बीमारी की नौयत के मुताबिक इलाज टाइमिंग रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जुम्मा तातील एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक पुलिस हेडक्वार्टर चौक होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप के बराबर में रेस कोर्स रोड सखर राबता 03112082600 एंड 03337143311 डॉक्टर आजम अली मुगल
2: छा अवां अच्छन वारन का परेशान आयो पेश आहे आर्ट क्रीम हेयर कलर पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या कि खास मौके जी तयारी हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्ट क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्ट क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
3: आया नबी मेरा आया नबी आया नबी मेरा
1: GFM नेटवर्क सजा रहा है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बाबरकत महफिल
0: 26 अगस्त 12 रबीउल अव्वल बरोज बुध शाम 5 बजे
1: मेजबानी करेंगे आगा जब्बार खान
0: और प्रोग्राम को रौनक बख्शेंगे साहिबजादा मोहम्मद उबेदुल्ला कुरैशी सुबहानी सरपरस्त जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी रोहड़ी और अंजुमन फिदायाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोहड़ी खतीब व मुतवली जामिया वआज वाली मस्जिद रोहड़ी जबकि नातिया नजराने पेश करेंगे वादिय मेहरान के मारूफ सना खान सैयद साद अली कासमी सखर
1: आइए इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रंग में रंगी इस महफिल को सुनिए और शामिल हो ईमान व अकीदत की रोशनी में सिर्फ GFM नेटवर्क पर
0: चोएतालीह सालनि जो तजुर्बो हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद चोएतालीह सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज जोड़नि जो सूर मैदे में जलन गैस बदहज़मी तेज़ाबियत गुर्दनि जी पथरी बवासीर बे औलादी वारनि जो किरण गंजपण फालिज ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुयसर इलाज फराम रहा आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03-26-22-00-440
4: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
5: سندھ کی آواز۔

जी है FM नेटवर्क आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ जीए FM पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए। जीए FM।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर वालदेन सवाल की दा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। त असांजी जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: सकरण की हो तो आवाज़ भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
0: जो शहर जो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।

DAFM Network आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ DAFM पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए। DAFM नेटवर्क पर।

साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है पूरी पूरी एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपको मेरा साथ रहता है आज भी रहेगा इसके अलावा जी वो तमाम तो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं चाहे आप बस में हैं ट्रक में हैं रिक्शे में हैं कार में हैं बाइक पे हैं जिस पे भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट लेट अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली बहुत खैरियत मौजूदा तो खैरियत

इसके अलावा जी तमाम पर सुनने वालों को जश्न ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारक. आज सबसे बड़ी ईद का दिन, और ये जो सबसे बड़ी ईद का दिन है ये वो ईद है जिसके सदके में बाकी की दो ईदें दी गई हैं हमें. बताता है खुद को खुदाए मोहम्मद, बताता है खुद को खुदाए मोहम्मद, ये दुनिया बनी है बराए मोहम्मद. जिनके आने से रोशन हुए हैं दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम. आज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जिसमें आपको मेरा साथ रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक, और इसी में हम आगे चलेंगे जी. और इस खूबसूरत सी नात के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में डार्क स्पॉट्स एक्नी ऐं स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग ऐं दिए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक ऐं निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
1: तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़ जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी
2: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
2: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
2: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो
1: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर
2: रिहाइशी प्लॉट्स 80-120 150 ऐं 200 गज जा
1: ऐं कारोबारी मौक़नि लाइ कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज
2: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं
1: साफ़ मिठो पाणी
2: बिजली गैस
1: 24 कलाक सिक्योरिटी
2: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
1: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो
2: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
1: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री
2: कॉन्टेक्ट
1: 03-00-93-17-25-2
2: and 03-13-27-57-860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
1: Tawan se mehfooz mustaqbal aur behtareen investment jo behtareen intekhab
3: yaar ma cha kya kithe vanya ghar mein baithu hai ha par theek hi na hai shayad mujhe zindagi laika dawai nahi thai
1: jo bhala cha chha tokhe saaf saaf bata maslo cha hai
3: yaar ek maslo hoje ta budhaya mujhe te maslan ji qatar lagal hai na bhukh sahi lage थी ऐं जे कुझु बि खावां थो त हज़म ई नथो थिए पेट फूकजी वञे थो हथ पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां
1: यार तुंहिंजा घणा न बस हिकु ई मसलो आहे
3: हिकु इहो कीअं
1: हा तुंहिंजो मैदो ख़राबु आहे छा तो न ॿुधो आहे मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी
3: त पोइ मां छा कयां
1: सोलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफ़ा मैदा कोर्स हे कुदरती जुज़नि मां तयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुलु ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो बुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई पेट फूकजण ख़तम सुस्ती ख़तम जिस्म में ताक़त ईंदई
3: वाह यार वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
1: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616 शिफ़ा मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त पैगाम है हमाद फार्म्स खालिस सरसों का तेल बनाने वालों की तरफ से जश्न ईद मिलादुल नबी की पुरनूर खुशियों का आगाज हो चुका है इस मुबारक मौके पर हम सबको अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करने और मोहब्बत व अख़ुवत का दर्स लेने की जरूरत है हमाद फार्म्स की तरफ से आप सबको जश्न ईद मिलादुल नबी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद खालिस और कुदरती सरसों का तेल आपकी सेहत और खुशियों का जामिन हमाद फार्म्स जहां खालसियत ही हमारी पहचान है जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक

दीजिए वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. ईद मिलाद उन नबी स्पेशल ट्रांसमिशन फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन FM रेडियो नेटवर्क. और इसके अलावा जो मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, आपको और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम में तीन तरीके का से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, इस पे भेजिए मैसेज, टाइप कीजिए उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे, और कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं आज की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है ईद नबी के हवाले से. सो हमारा जो सेगमेंट होता है जी सुर लगाओ गाना सुनाओ, उसमें आज हम आपसे सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत नात, और बहुत खूबसूरत नात आप हमें सुनाएंगे, और वो जो नात आप हमें सुनाएंगे वो उसी टाइम पे प्ले कर दी जाएगी. ठीक है जी, तो ये आज होगा. और इसके अलावा जी साथ साथ हम आगे चलते हैं आप लोगों के कॉमेंट्स और मैसेजेस जो कि मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, तो उनकी तरफ भी चलते हैं जी विदाउट एनी डिले. और बहुत सारे कॉमेंट्स

नजीर खोसो ने हमें ज्वाइन किया है सोबरपुर बलूचिस्तान से. इनके बहुत सारे कमेंट आए हैं, साथ साथ कॉलर भी मेरे साथ एक अदद लाइन पे मौजूद है. चेक करेंगे कौन है कहां से. जी हेलो. ओके जी हेलो. और ये कॉल हो गई है ड्रॉप. तो 03000113488 इसके ऊपर कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद सुनाएंगे एक बहुत

0: नेक्स्ट कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: ये चिश्ती बात कर रहा
0: हूँ। कौन बात कर रहे हैं, सॉरी?
1: चिश्ती।
0: चिश्ती बात कर रहे हैं
1: जी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं? सखर से बात कर रहे हैं। पहली दफा प्रोग्राम सुन रहे हैं? पहली दफा कॉल लगी है? अच्छा जी, थैंक यू सो मच आपका। और मुझे बताएं कि कोई नाच सुनाएंगे आप हमें अच्छी सी? प्लीज सुनाइए।
1: जब
0: ओके जी, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस, और आपके दिन से सुहान है।
0: सॉरी, आपकी आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा है, प्लीज को क्लियर कीजिए।
1: जी, मैं कर रहा हूँ कि आज के दिन के हवाले से हजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर काम करें, प्यार मोहब्बत और आपस में खलूस के साथ रहें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें और आलम इस्लाम के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आलम इस्लाम को इज्जत बख्शे और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ फरमाएं।
0: आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा चिश्ती, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। एंड हम प्ले करने जा रहे हैं जी ये खूबसूरत नाच जो कि हमें सुनाई है चिश्ती ने, तो सुनते हैं जी बहुत ही मोहब्बत और अदब के साथ, और इसी के साथ हम चलते हैं आगे।

0: GAFM 88 Network सिंध की आवाज
1: अच्छा वारन का परेशान आयो पेश आहे आर्ट क्रीम हेयर कलर पंजे पसंदीदा रंग सा पंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश ऐ वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या की खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट क्रीम हेयर कलर सा पंजी शख्सियत में आयो नओ रंग नओ अंदाज ऐ नई ताजगी अडी पंजे वेजे स्टोर ता आर्ट क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐ पंजी खूबसूरती के दियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान की समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो पोई तवां लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाऊं जारी आहिन चार सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM पंज सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD बिन सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA खास सहूलतूं स्कॉलरशिप्स मौजूद बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे त DPD प्रोग्राम में सिर्फ ₹10,000 दाखिला फीस आई फीस सेमेस्टर सिर्फ ₹60,000 हिते तवां के मिलंदा एयर कंडीशनड क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकमल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप आई फिजियोथेरेपी OPD जी बेहतरीन सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिनि तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस OT हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबितो 07115635642 ऐं 03108166111
3: आया नबी मेरा आया नबी
1: GFM नेटवर्क सजा रहा है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बाबरकत महफिल
2: 26 अगस्त 12 रबीउल अव्वल बरोज बुध शाम 5 बजे
1: मेजबानी करेंगे आगा जब्बार खान
2: और प्रोग्राम को रौनक बख्शेंगे साहिबजादा मोहम्मद उबैदुल्लाह कुरैशी सुबहानी सरपरस्त जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी रोहड़ी और अंजुमन फिदायान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोहड़ी खतीब व मुतवली जामिया वआज वाली मस्जिद रोहड़ी जबकि नातिया नजराने पेश करेंगे वादिय महरान के मारूफ सना खान सैयद साद अली कासमी सखर
1: आइए इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगी इस महफिल को सुनिए और शामिल हो ईमान और अकीदत की रोशनी में सिर्फ GFM नेटवर्क पर
2: चोएतालीह सालन जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद चोएतालीह सालन जे वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण फॉलेज खारिश ऐं बियन मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहा आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 बजे खां शाम 5 बजे ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03-26-22-00-440
1: हेल्थ इज वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सर
4: فیلوشپ کے لیے آج ہی رابطہ کریں. آگاہ جبار 03009312700.

0: जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक है जी. और लेने जा रहे हैं शो की नेक्स्ट कॉल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: शिकागो से. जमालुद्दीन भाई.
0: जमालुद्दीन भाई, भाई अच्छी सी नाच सुना दें प्लीज. सॉरी सॉरी, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है. बिल्कुल बड़ा दिन है, बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है. और ईदों की ईद है, सबसे बड़ी ईद है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो प्लीज सुनाइए हमें अच्छी सी नात.
1: हाँ, मैं पुरा रहा हूँ. हमने से कहा है कि आपके संग कोई नहीं है, आपने बोलो से खुदार रहमत आलमी. हमने देखा है हमें आपके संग कोई.
0: ओके जी, थैंक यू. किसकी आवाज में है ये नात?
1: ये इंदाजला.
0: अच्छा, टाइटल क्या है इसका?
1: टाइटल पता नहीं.
0: चले मैं इसको सर्च करती हूँ जी. और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. 03000113488 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं मुझे, और कॉल करने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं. हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आप सुन रहे हैं और सुन पाएंगे आपसे ठीक ठीक पूरे पूरे एक बजे तक. और हम प्ले करने जा रहे हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सी नात. इसको हम प्ले करेंगे और इसी के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. हम प्ले करेंगे आतिफ असलम की आवाज को. हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद. दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद.

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इंतजामिया मुझे वार्ड में 16 बार दाखिल हुआ है, एक बार के बचाए हुए वाहे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चयो है त सड़ी फोत थियल पंज ॿारनि जा मड़ वासन हवाले कया विया आहिनि। ॿियनि जा मड़ बि सुञाण बाद वासन हवाले कया वेंदा। साने जी बि शफ़ाफ़ जांच कई वेंदी।
2: हमें क्या पता कि बच्चे 10 जने 20 गायब हुए हूं?
3: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गया और उस SHO नदीम ने बोला।
1: सड़ी फोत थियल ॿारनि जे वारसनि जा अस्पताल इंतजामिया ते संगीन इल्ज़ाम। वारसनि मूजिबि बाहि हथ सां लॻाई वई आहे। बाहि पाण लॻे हा त अस्पताल जो अमलो बि सड़ी ज़ख़्मी थिए हा। बाहि वक़्त वे अमलो ॿारनि खे ॿाहिरि कढण बदिरां पाण भॼी वियो हो। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। वज़ीर आज़म

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर वालदेन सवाल की दाहें तो जड़े असा जे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी आ है तो हाने बाद में उनन के केड़ी जरूरत पड़े थी। मोजो नालो हाफिज मोहम्मद इस्लाम नूनारी आ है। इन जो जवाब बिल्कुल आसान है। ये असा जे बार हन तो असा जी मामूली गफलत जे करे जिंदगी भर माजूर रहजी वजन था। अगस्त में तो 10 सालन तई जे बार आन पोलियो बूस्टर डोज जो है वो लाजमी लग रहा पोलियो जहाँ कुछ अगर जरात रह भी वह अल्लाह के हुक्म से वे खत्म थी वा ए बच्चो हमेशा के लिए महफूज रहो एन भी माजूरी सबब न बनबो।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
0: पहचो शहर पहचो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी की गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपका मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. वापस आ चुके हैं एक और ब्रेक के बाद. एंड आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीके का से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 881 पे. और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं, तो कॉमेंट कीजिएगा. और इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं जी, और ये कर सकते हैं कि आपके कॉमेंट्स को भी हम रीड करेंगे. एंड कॉमेंट्स के साथ साथ हम आगे चलेंगे.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: अगर खूबसूरती खपे तो आर्श अपनायो. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में. डार्क स्पॉट्स, एक्ने और स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दिए शानदार मिरेकल ग्लो. कुदरती चमक और निखार जो बेहतरीन इंतखाब. आर्श ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
3: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहो था जिते हो जे तहफुस जदीद सहूलतों ए मंजूर थेल सिक्योरिटी
4: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
3: सखर शिकारपुर रोड ते
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
3: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थेल
4: एक शानदार ए काबिल एतमाद रिहायशी मंसूबो
3: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
4: रिहायशी प्लॉट्स 80 120 150 200 गज
3: जा कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज 600 गज
4: हिते तमा के मिलन थियो जदीद सहूलतों
3: साफ मिठो पानी
4: बिजली गैस
3: 24 कलाक सिक्योरिटी
4: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी भेजो आहे
3: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिन लाए बेहतरीन मौके बनाए थो
4: अजी पेंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
3: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
4: कांटेक्ट
3: 03009317252
4: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
3: Tamaje mehfooz mustaqbal hai behtareen investment jo behtareen intekhab
5: yaar macha kya kithe vanya ghar mein baithu hai ha par theek hi naya shayad mujhe zindagi layak ka dawai nahi thai
3: jo bhala chhatwa to ke saaf saaf budha maslo chhai
5: yaar ek maslo hoje ta budhaya mujhe te maslan ji qatar lagala hai na bhookh sahi lage thi ऐं जे कुछ भी खावा थो त हजम ई न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वनन था ऐं सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कहे कम जो रहंदो ई नाया
3: यारे तुजा घणा न बस हिक ही मसलो आ
5: हिक इहो किए
3: हां तुजो मैदो खराब आ छा तो न बुधवा मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी न हाजमो थिंदो ऐं न ताकत मिलंदी
5: त पो मां छा कया
3: सोलो हला

0: ए कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स तुंजे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुंजे मैदे के बिल्कुल ताजो आए मजबूत करे छरींदो बुख खुली वेंदई खादो सुठे नमूने हजम थींदई पेट भूख जण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई
1: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ये किथे मिलंदो
0: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आए राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त
2: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां जे शहर सखर में मैदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी ए बादी बवासी जनाना बीमार समेत इन मर्जन जो इलाज करे रहयो आहे रोजाना सुबह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेजो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नजद पीएसओ पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर राप्ती जिलाए 0311-2082-600 आई 0333-7143-311
3: जरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो अहमद हटो वहां से हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर رابطہ करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध

0: DBSN, DBSM. And our diploma programs, LHV, CMW, CNA. Khas sahulaton, scholarships maujood. Bin saalan je courses mein, admission bilkum free. Jare ta DPD program mein sirf 10,000 rupiah dakhla fees. Aye fees semester sirf 60,000 rupiah. Hite tawa ke milanda, air conditioned classrooms, jadid laboratories, mukamal library, tajurbikar faculty, hostel, pick and drop. Aye physiotherapy, OPD ji behtareen sahulat. Ye idaro Sindh hukumat je health department. का मंजूर शुदा एंड पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिन तह करे पंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अजी दाखला वचो एक खास गाल इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस ओटी हेल्थ टेक्नीशियन एमबीए सब कोर्सेस पिन थिना आहिन एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर رابطو 0711563 642 IA 0310 8166111.
1: अच्छा अवां अच्छन वारन का परेशान आयो पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर पहिंजे पसंदीदा रंग सा पहिंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश नहीं वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या की खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सा पहिंजे शख्सियत में आयो नव रंग नव अंदाज ऐ नई ताजगी अडी पहिंजे वेजे स्टोर ता आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐ पहिंजे खूबसूरती के दियो नव रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
2: आया नबी मेरा आया नबी आया नबी मेरा
3: जी एफएम नेटवर्क सजा रहा है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बाबरकत महफिल
0: 26 अगस्त 12 रबीउल अव्वल बरोज बुध शाम 5 बजे
3: मेजबानी करेंगे आगा जब्बार खान
0: और प्रोग्राम को रौनक बख्शेंगे साहिबजादा मोहम्मद उबैदुल्लाह कुरैशी सुबहानी सरपरस्त जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी रोहड़ी और अंजुमन फिदायान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोहड़ी खतीब व मुतवली जामिया वआज वाली मस्जिद रोहड़ी जबकि नातिया नजराने पेश करेंगे वादी मेहरान के मारूफ सना खान सैयद साद अली कासमी सखर
3: आइए इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रंग में रंगी इस महफिल को सुनिए और शामिल हो ईमान व अकीदत की रोशनी में सिर्फ जीएफएम नेटवर्क पर

आगे जी सफदर बलोच के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे मैसेजेस. और फाइनली इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और लास्ट में प्ले करूंगी जी आतिफ असलम की आवाज को. और इसी के साथ फाइनली इजाजत लेंगे आपसे, इंशाल्लाह हमारी चर्चा होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आवर. जैसे नमत भूलिएगा, जिंदगी गुजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. एक बार फिर से ईद मिलादुन नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो. इसी के साथ फाइनली दिस इज मी आरजी रुखसार साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

जी है एफएम नेटवर्क, आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ जीए एफएम पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए। जीए एफएम नेटवर्क।

0: ਤੇ ਚੰਦ ਦੀਮ ਨੇ ਬੋਲੇ
1: इस्लामाबाद के बिमरी अस्पताल के बारन वाले वार्ड के बाह लगी हुई 15 ताजा जावल बार सड़ी फोत की वह एक के बचाए वो बिम के डायरेक्टर बाहसाने में 15 बार फोत थे की तस्दीक कर छी। अस्पताल इंतजामिया मौजूद वार्ड में 16 बार दाखिल हुआ एक बार के बचाए वो फोती बार में 11 की सुणप की वही 5 लाश वारसन हवाले क्या वह सड़ी फोत थे बार वारसन का इंतजाम थे संगीन इल्जाम वारसन मौजूद बाह लगी हाँ अस्पताल जो अमलो भी सड़ी जख्मी थे बाहे वक्त भी अमलो बारन के बाहर करण बदरा पान भजी हुए हो। पिमसाने बाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतह इजलास लागापियल आफिसर से सख्त कावड़ जो इजहार सेहत वाले वफाकी सेक्रेटरी असलम गोरी के अहदे ता हटाए छो साने की जांच ला आला सतह कमेटी भी कायम अगुण सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह हों वाके की शफाफ जांच कर जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत फोती बार वारसन से हमदर्दी दुख जो इजहार शहबाज शरीफ चो है नुकसान जो अजालो नो कर सकें।

0: चांडो में लिंगर जो कुहाड़ियों लगल लाश हथ लाश जिसणप 14 सालन जे लिंगर बरकत चांडो जे नाले सा गई वही। पुलिस चयो है टिन जणन के शक की बुनियाद से गिरफ्तार किया है। वाकई बाबत जांच कर रहा हूं। मटियारी में नौजवान पुत्र असरार तौर बाग मां लाश मिलो है। कौमी शाहरा के घर में मीरन के बाग मां नौजवान जो लाश हथायो है। अस्पताल मुंतकिल कल लाश की जहां से पुट मोहम्मद इस्माइल तौर सुणप की है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आया नबी मेरा आया नबी आया नबी मेरा।
3: GAFM नेटवर्क आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ GAFM पर। आए मोहब्बत अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए GAFM नेटवर्क पर। घर एक अड़ी जाए थे ठहन चाहो था जिते हो जे तहफुज जदीद सहूलतों मंजूर थियल सिक्योरिटी
4: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
3: सखर शिकारपुर रोड ते
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
3: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
4: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
3: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
4: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 गज जा
3: कारोबारी मौके लाइ कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज और 600 गज
4: इतने तमाम के मिलन थी जदीद सहूलतों
3: साफ मिठो पानी
4: बिजली गैस
3: 24 कलाक सिक्योरिटी
4: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
3: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिन लाए बेहतरीन मौके बनाए थो
4: अजी पेंजी प्लॉट जी बुकिंग करायो
3: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
4: कॉन्टेक्ट
3: 03009317252
4: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
3: Tawan se mehfooz mustaqbal aur behtareen investment jo behtareen intikhab
5: Amma je pehle shahar Sakhar aur Rohri mein
6: Jinnah Hospital Karachi jo tarbiyati afta
5: ITB Hospital Kharpur jo mashhoor
6: Allergy damo TB phephdan aur chhati je mukhtalif bimarin jo mahir
5: Dr Mohammad Nasir Sumro
6: Chest specialist pulmonologist
5: Mahir Amraz
6: phephdan mein ग्यारो फिफड़न में पानी आई फिफड़न में हवा भरजन
5: टीबी नमूनिया आई बारन में छाती जी बीमारी
6: मोटापे जे करे निंड्र आई साह में तकलीफ
5: सहको दमो सिगरेट डोशी खान निजात
6: बार बार नजलो जुकाम पुरानी खंग
5: आई बलगम में रत अचण वगैरह
6: क्लिनिक टाइमिंग्स हर छंछर खां अरबा ताई शाम 4 खां 7 वगे ताई डॉक्टर शाहिद मीनानी हॉस्पिटल तीर चौक बैराज रोड सखर हेरा अस्पताल जे वेझो
5: हर खमीस आई आचर ते
6: इंडस अस्पताल घोटकी में रोजानो सुबह जो 9 वगे का मंझंद 1 वगे ताई
5: तालका अस्पताल रोड़ी में मरीजन जो मुफ्त मुआइनो कंदा
6: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
5: राबते जिलाई
6: 03-11-390-87-81 छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो कोई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशन
7: पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हैदरी।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
2: GFM 90.8।

0: उडरी वन कोयल आया दाधो मां दुखोयल
1: उडरी वन कोयल आया दाधो मां दुखोयल।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनते हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال، ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے۔

sun chui ho vi la tamal hanga sun chui ho vi la tamal hanga.

0: वह जो शहर वह जो घर सकरंड आई सकरंड जो आवाज
1: GFM 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Remit, Bank Al Habib, Rishto Bharose Jo.
2: अगर खूबसूरत स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
3: जी है FM नेटवर्क आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से
4: आया नबी मेरा आया नबी
3: FM नेटवर्क आप सबको ईद देने वाली नातें रोशनियों की बहार और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग सब कुछ सुने सिर्फ जीए FM पर आए मोहब्बत अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए जी एफ एम

0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं 24 सालियानो उर्स मुबारक हज़रत पीर तरीकत रहबर शरीयत कयूम जहां अलहाज पीर मोहम्मद उर्फ इब्राहिम जान सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह बतारीख 15 रबीउल अव्वल ब मुताबिक 29 अगस्त छंछर जे डीह सुबह जो 10 वगे खानकाह आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया गुलजार खलील सामारो में वडे अकीदत ऐं एहतराम सां मुनक़द कयो वियो आहे जैमें खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा मुफ्ती हकुन नबी सिकंदरी उर्दू में खिताब आलमी स्कॉलर हजरत अल्लामा सैयद जुल्फकार अली शाह गीलानी कराची वारा करण फरमाइंदा सभी मुसलमानन के हिन बाबरकत तकरीब में शरीक थियण जी दावत दिजे थी शरीक थी सवाबे दारीन हासिल कंदा नोट दुआ खां पोए लंगर पिण विरहायो वेंदो पारा बारात खान पठान सालेह बंभरो
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हैदराबाद के मशहूर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुएब शेख शुगर मेद फालिज मरीजों का हर बुध दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुआयना और इलाज करते हैं। एड्रेस अल शफा मेडिकल सेंटर न्यू टाउन मीरपुर खास। मजीद मालूम के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 02338744405।
1: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आया वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल है एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक के सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात के लिए राब्तो करियो 03062447700
0: कारोबारी हजरत के लिए खुशखबरी आपके कारोबार आप भी अपने कारोबारी इश्तहारात आम ऐलानात शादी ब्याह की मुबारकबाद मिलाद जलसा स्कूल कॉलेजेस ब्यूटी पार्लर्स कॉस्मेटिक्स शॉप्स जनरल और मेडिकल स्टोर्स बुटीक गारमेंट शॉप्स मोबाइल शॉप्स ज्वेलर्स शॉप्स अस्पताल फ्री मेडिकल कैंप्स एनजीओस फूड पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स शोरूम ऑटो शॉप्स हाउसिंग स्कीम्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स सकाफती मेला होटल्स रेस्टोरेंट्स पेट्रोल पंप्स सीएनजी स्टेशन शादी हॉल मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स और

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए, रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से मुबारकबाद पेश करता है. दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
0: तुफा जाने रहमत के लाखों सलाम.
3: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
4: जैज बेमिसाल प्लस ऑफर से पाए जबरदस्त कनेक्ट. सिर्फ 270 रुपए के लोड में विद जैज 5G. अभी ऑफर हासिल करने के लिए *9277 हैश डायल करें. शराय तो जवाबित लागू है.
5: आंखों के रेस्टोरेंट मोहम्मद हयात खान, सफेद मोती का ऑपरेशन, बजरिया लेजर फेको, काले पानी का इलाज और ऑपरेशन, पर्दों की बीमारियों का इलाज और आंखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं. रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात

فريق تفاري

0: की क्षमा उनके सीनों में मौजूद होनी चाहिए। और ये जो ईमान के जो जो डाकू हैं उनसे किनारा कश होना चाहिए। और उलमा इकराम और महाफिल मीलाद में आना जाना चाहिए। सरकार की गुलामी जो है उसका पट्टा जो है अपने गले में डाल दें, यही एक निजात का रास्ता है, यही हमेशा के लिए जो है ना कामयाबी का रास्ता है।
1: जी रिफरेंस, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को सुना। और हमारे साथ आलम दीन मौजूद थे, साहबजादा उबैदुल्ला सुबहानी साहब जो हैं, और मोहम्मद साहब कासमी साहब भी नाथ खान जो सना खान थे हमारे। तो मैं साहबजादा साहब से गुजारिश करूंगा कि दुआ जो है अपना उसी दुआ जी FM 88 के लिए और अपना तमाम जिनमें लिस्टर्स ने हमारी मतलब ये प्रोग्राम सुना और हमारे साथ इस अकीदत में शामिल हुए।
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया अल मुरसलीन इलाही तो आसा कुनी मुश्किलात फिल मोहम्मद अलैहि सलात इलाही बहके बनी फातिमा के बरको अलैमा कुनी खातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस दामा ने आले रसूल बादशाह जुर्म मारा दरगुजार मा गुनहगार मतु आमर जुगार तू निको कारी ओ मोहब्बत कर दे जुर्म बेअंदाज बेहद कर दे करीमा बबख्शा बर हालिमा के हस्त मसीर कमंद हवा नदारे में गैर फरियाद रस तू ही आसियाँ रो खता बख्श बस नगादार मारा जरा है खता खता दरगुजारो सवाब नमा या रसूल अल्लाह उन्दर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्न नाफी बार गम में मगरकुन खुद यदि सहलना अशकालना तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं मरीज गुनाह है शफा मांगते हैं नहीं मांगते हम अकेले ही तुझसे शहनशाह वली अंबिया मांगते हैं खारे हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में कुछ भी लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में या अल्लाह हमारा काम है तेरा नाम लेना तेरा काम है हम गिरते गुनाहगारों को थाम लेना या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा या अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा बीमारों को शफाए कामला अता फरमा खुसूसन GA FM नेटवर्क के जो MD हमारे जनाब जवाद मेमन साहब और जनाब मुजम्मल मेमन साहब और तमाम स्टेशन मैनेजर स्टाफ अहले खाना हमारे आज के होस्ट जनाब आगा अब्दुल जब्बार खान और उनके अहले खाना और हमारे जो दूसरे यहाँ की स्टाफ है अतर

मुसलमानन के विरहाइण वाली साजिश के फील्ड मार्शल से गडजी नाकाम बनायो। अमन दुश्मन अंसर मुस्लिम मुल्कन में नफरत पखेड़ में नाकाम रहा। सऊदी ए तुर्किया सदाई सुठे ए खराब वक्त में पाकिस्तान जो साथ दिनो। इस्लामाबाद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के खिताब कदे वजीर आजम चयो ता जो को इज्तिमा याद दिराए तो असा एक उम्मत आयूं। नई नस्ल कौम की उम्मीदन जो मरकज है। नई नस्ल के मुल्क ए उम्मत की तरक्की लाए किरदार अदा करना पवंदो।

सिंध समेत सॼी मुल्क में रहमतुल आलमीन ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसलम जी विलादत जो जशन मल्हायो पियो वञे। ॾींहं जी शुरूआति वफ़ाक़ी राजधानी में 31 तौबनि ऐं सूबनि में 21 तौबनि जी सलामी सां कई वई। मस्जिदनि में बि ख़ासि दुआउनि जो अहतमाम, मुल्की तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ ख़ासि दुआऊं घुरियूं वयूं। नंढनि वॾनि शहरनि में ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसलम सां मुहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काणो, सखर ऐं शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं कढियूं वयूं। हर तरफ़ नातन ऐं दुरूदनि जी बहार। कराचीअ में निकतल रैलीअ में वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं ॿियनि वज़ीरनि जी शिरकत। हैदराबाद डिवीज़न में ईद मिलादुलनबीअ जूं रैलियूं ऐं मेड़ाका, दादू, जामशोरो, मठियारी, बदीन, ठटो, सिजावल, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलियार में रैलियूं कढियूं वयूं। मातली, तलार, सेवण ऐं ॿियनि शहरनि में बि मेड़ाका, मरहबा या मुस्तफ़ा जा नारा। सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न में बि ईद मिलादुलनबी सलाहु अल वसलम जे सिलसिले में रैलियूं कढियूं वयूं। हर तरफ़ नातन ऐं दुरूदनि जो विर्त। घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंबर शादात कोट ऐं कश्मोर ऐं कंदकोट में रैलियूं कढियूं वयूं। रोड़ी, सालेपट, पनवाकिल, डहरकी, उबावड़ो, कोटडिजी, गंबट, किंगरी ऐं सोबेदेरे में बि रैलियूं कढियूं वयूं। डोकरी, रतोदेरो, वारह, गढ़ी, यासीन, तंगवाणी समेत ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढियूं वयूं। मीरपुर ख़ास ऐं शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न में बि 12 रबीउल अव्वल जा प्रोग्राम, मेलाद जूं महफ़िलूं, उमरकोट, थरपारकर, सांगड़, नौशर, फिरोज, सकरण, मोरो, ठारू शाह, कंडियारो ऐं काज़ी अहमद में रैलियूं कढियूं वयूं। डिगड़ी, इस्लामकोट, नंगर पार्क, कुंडरी, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढियूं वयूं। ॿिन्ही जहाननि जे सरदार खे भेटा पेश। मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारां तहरान जे दौरे बाद अमरीका ऐं ईरान विच में जंग बंदीअ जा इम्कान वधी विया। अमरीका ऐं ईरान नई जंग बंदी ते इतफ़ा करे वरितो। कुझु ॾींहनि में सरकारी सतह ते ऐलान कयो वेंदो। रूसी मीडिया जी दावा। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राखची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां फ़ोन ते राब्तो कयो। अब्बास राखी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां खिते जी मौजूदा सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो त असां तकरार जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए चाहियूं था, जंग जी या माशी दॿाउ जो बि ॼमी मुक़ाबिलो कंदासीं। फ़िलहाल अमरीका ईरान ते वधीक हमला न कंदो, अमरीकी परॾेही वज़ीर इतिहादी मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो। अमरीकी मीडिया मूजिबि मार्को रूबियो इतिहादी मुल्कनि जे हमनसबनि खे फ़ोन ते आगाह कयो आहे त अमरीका ईरान ते हमलनि खे पाबंदियुनि ॾांहुं मुंतक़िल करे रहियो आहे। ईरान ते वधीक हमलनि जो इम्कान नाहे।

टेड़ी भरसा शॉर्ट सर्किट सबब बागड़ी बिरादरी के बारन घर के बाह समूर सामान सड़ी वो मदरसे भरसा रामू बागड़ी समेत बेन के घर के बाह लगी वही जेवर रकम बो सामान सड़ी वो मुतासर जो चवण है बिजली में ओचितो बाह लगी पांजू जानू बचाए घर में बाहर निकता है।

0: नेपाल ऐं चीन जे शहर तिब्बत जे सरहदी इलाइक़े में आयल ओचिते ॿोड़ तबाही मचाए छॾी। 17 ॼणा फौत, केतिरा ई ज़ख़्मी। ओचितो आयल ॿोड़ जी CCTV फोटेजिस बि साम्हूं अची विया। फोटेजिस में शहरनि खे तफ़री वारे हंध तां पाणीअ में चाड़ बाद भॼंदे ॾिसी सघिजे थो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हम सजाएंगे। अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
1: DAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बा वक्त बे अमलो बारन के बाहर कढ़ण बदरा पान भजी वे हो। पिम्स सानेबाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतही इजलास, लागापियल ऑफिसर से सख्त कावड़ जो इजहार। सेहत वारे फाकी सेक्रेटरी असलम गोरिय के उहदे तां हटायो वियो। साने की जांच लाए आला सतही कमेटी कायम। अगूणो सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह हों। वाके की शफाफ जांच कर जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। फौती बारन के वारसन से हमदर्दी ए दुख जो इजहार। शहबाज शरीफ चो तो नुकसान जो अजालो न थो कर सकजे। कोताही कंदड़न के न छींदी पान के बेहतसाब लाए वजीर आजम आडो पेश किया है। ऑक्सीजन सबब बाह जल्दी पकड़ी। सेहत वाले फाकी वजीर मुस्तफा कमाल चया है तो वार्ड में बारन के ऑक्सीजन लगल हुई जैं सबब बाह वधीक तेजी से भड़की थी। का भी शय लिकी न सकंदी, सब कुछ सामू इंदो। मुमलकती वजीर तलाल चौधरी चयो त रेस्क्यू टीमू वाके वारे हंध जल्द पहुंती हुई। पिम्स के सीसीटीवी फुटेज समेत समूरी शाहिदू महफूज क्यों हैं। जिम्मेवार के न छो वो। पिम्स साने ते समूरो मुल्क रोई रो है। सानिया रोकण ला एहतसाब जरूरी है। पिम्स सियासत कर न पर अवाम जा अंज बुधन आया आयु। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान चया है तो जिम्मेवार वजीर के पानी इस्तीफा दियण घुर्जे। फायर ब्रिगेड ला पिम्स जा दर बंद हुआ। वाटर टैंक्स भी खाली हुआ। डॉक्टर भी मौजूद न हुआ। अवाम तरफा भी सवाल पुछंदी। सानियो किंज पेश आयो। पिम्स अस्पताल के इंतजामिया शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर वरती। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त एनआईसीयू में इनक्यूब्यूटर सां गॾु ऑक्सीजन वारो नेबोलाइज़र फाटो। नेबोलाइज़र फाटण सबब ऑक्सीजन मां बाह पखड़ी। ऑक्सीजन बंद थियण ऐं सड़न सबब ॿारनि जो मौत थियो आहे। इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड पिम्स में बाह वसायण वारन इंतजाम के नाकाफी करार दे छो। बाह का बचाव वारन इंतजाम से भी सवाल उथारे छा। इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड के शुरुआती रिपोर्ट में पिम्स अस्पताल बाबत छिड़काइंदड़ इंकशाफ। रिपोर्ट मूजिब अस्पताल के दरवाजन से भी ताला लगल हुआ। इमरजेंसी गेट भी मौजूद न हो। पिम्स थाने से मुल्की सियासी क्यादत डुखारी। फौती बारन के वारसन से हमदर्दी जो इजहार। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसन नकवी, वडे वजीर मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमण बेन पारा दुख जो इजहार। सदर आसिफ जरदारी चयो तो थाने के जिम्मेवार तयन कर कार्रवाई की वे। बिलावल भुट्टो चयो तो पिम्स थानो इंसानी तारीख जो बदतरीन वाक्यो है। मुराद अली शाह जो चवण हो तो पिम्स थानो अफसोसनाक ए डुखाइंदड़ है। शर्जील मेमण चयो तो मुतासिरन की डुख में बराबर जहा शरीक आयो।

मुसलमाननि खे विरहाइण वारी साज़िश खे फील्ड मार्शल सां गॾिजी नाकाम बणायो। अमन दुश्मन अंसर मुस्लिम मुल्कनि में नफ़रत पखेड़ण में नाकाम रहिया। सऊदी ऐं तुर्कीअ सदाई सुठी ऐं ख़राबु वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो। इस्लामाबाद में सीरत उलनबी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त जेको इजतमा यादि ॾियारे थो त असां हिकु उमत आहियूं। नई नसुल क़ौम जी उमेदनि जो मर्कज़ आहे। नई नसुल खे मुल्क ऐं उमत जी तरक़ीअ लाइ किरदारु अदा करणो पवंदो।

हैदराबाद डिवीजन में ईद मिलादुलनबी जो रैलियूं ऐं मेड़ाका दादू जामशोरो मटियारी बदीन ठठो सिजावल टंडो मोहम्मद खान ऐं टंडे अलिहार में रैलियूं कढियूं वयूं। मातली तलार सेवण जोही मेहर चंबड़ चूहर जमाली सईदाबाद उडेड़ाल ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढियूं वयूं। सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न में ईद मिलादुलनबी सलाहु अल वसलम जे सिलसिले में रैलियूं हर तरफ़ नातन ऐं दुरूद जो विर्तु। घोटकी खैरपुर शिकारपुर जेकबाबाद कंबर शहदाद कोट ऐं कश्मोर ऐं कंदकोट में रैलियूं कढियूं वयूं। रोहड़ी सालेपट पनवाकिल डहरकी उबाड़ो कोट डिजी गंबट किंगरी ऐं सूबेदेरे में बि रैलियूं कढियूं वयूं। रतोदेरो वारे गढ़ी यासीन में बि रैलियूं कढियूं वयूं। मीरपुर खास ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में 12 रबी अल्वल जा प्रोग्राम मिलाद जूं महफ़िलूं उमरकोट थरपारकर सांगड़ नौशहरो फिरोज़ सकरण मोरो ठारू शाह कंडियारो ऐं काज़ी अहमद में रैलियूं कढियूं वयूं। झुडो डिगड़ी इस्लामकोट नंगर पारकर कुंडी सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढियूं वयूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारां तहरान जे दौरे बाद अमरीका ऐं ईरान विच में जंग बंदीअ जा इम्कान वधी विया। अमरीका ऐं ईरान नई जंग बंदीअ ते इतफ़ाक़ करे वरितो। कुझु ॾींहनि में सरकारी सतह ते ऐलान कयो वेंदो। रूसी मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राखची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां फ़ोन ते राब्तो कयो। अब्बास राखची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं। ईरानी सदर जो चवणु हो त असां तकरार जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए चाहियूं था। जंग जीअं मुआशी दॿाउ जो बि ॼमी मुक़ाबिलो कंदासीं। फ़िलहाल अमरीका ईरान ते वधीक हमला न कंदो। अमरीकी परॾेही वज़ीर इतिहादी मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो। अमरीकी मीडिया मूजिबि मार्को रूबियो इतिहादी मुल्कनि जे हम मनसबनि खे फ़ोन ते आगाह कयो आहे त अमरीका ईरान ते हमलनि खे पाबंदियुनि ॾांहुं मुंतकिल करे रहियो आहे। ईरान ते वधीक हमलनि जो इम्कान आहे।

सत्रहों ग्रेड नथो घुर्जे सिंध जे 63 सब रजिस्ट्रार तरक्की वठण खां इनकार करे छॾियो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तरक्की वठण खां इनकारी सब रजिस्ट्रार जी तरक्की न वठण वारी दरख़्वास्त बि क़बूल करे छॾी तरक्की वठण खां इनकार कंदड़ सब रजिस्ट्रार में आसिफ सरकी ज़ुल्फ़िकार लाखो अब्दुल नबी लाशारी जावेद वुघियो आसिफ चांडियो यासिर शाह आबिद मरी तारिक मक्सी नज़ीर ज़रदारी इमदाद कुरेशी मंठार ज़रदारी नज़ीर उमरानी गुलहसन लुंड मुनीर शाह नूर मोहम्मद जैसन ॿिया शामिल सब रजिस्ट्रार 17 स्किल में तरक्की वठण इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन थियण खां इनकार कयो तरक़ीअ खां इनकारी सब रजिस्ट्रार सालनि खे साॻियनि हंधनि ते मुक़ररु थियलु।

सिंध हुकूमत पारां अवेक्यू ट्रस्ट मिल्कियतुनि जी निगरानी जा अख़्तियार डेप्टी कमिश्नर हवाले सूबे जे समूरनि डेप्टी कमिश्नर्स खे लाॻापियल ज़िलनि में एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु कयो वियो। नोटिफिकेशन मूजिब कमर्शियल ज़रई ऐं मज़हबी अवेक्यू ट्रस्ट मिल्कियतुनि जे तहफ़ुज़ ज़ाब्ते इंतिज़ाम ऐं निगरानीअ जा अख़्तियार डीसीज़ हवाले कया विया। डिप्टी कमिश्नर बोर्ड जे सहकार लाइ ज़िले सतह जूं कमेटियूं पिणु क़ाइमु कयूं वयूं। सूबाई काबीना जी मंज़ूरी खां पोइ नोटिफिकेशन जारी।

मलीर जे इलाके शाह लतीफ टाउन में फुर मज़ामत नौजवान कतल। पुलिस जो चवण है हथियारबंदन फुर मज़ामत अरड़नि वरनि जे हामिद के गोलियूं हणी कतल कयो। खैरपुर में फुर मज़ामत कतल थियल इंजीनियर फैस गुलजार भुट्टो की कतल की जांच लाइ अठ रुकनी कमेटी कायम। गफलत लापरवाही के इल्ज़ाम हेठ जानी बुरड़ा चौकी इंचार्ज कामरान वसाण मुअतल। डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठान पारा एसएसपी खैरपुर अमीर सऊद मकसद की सरबराही में जोड़ियल कमेटी में एसएसपी सखर एएसपी सखर डीएसपी कोटली जी एसएचओ कोटली जी इंचार्ज सीआईए आईटी इंचार्ज ए केस जो जांच ऑफिसर शामिल। डीआईजी सखर कमेटी के हिदायत कई है वाक़े की शफाफ जांच कर सत ढीन अंदर रिपोर्ट जमा कराई वे वाक़े में मुलविस असुल जवाबदार के गिरफ्तार कर डूह में इस्तेमाल थियल हथियार हथ पे वे। खोसकी में हफ्तों अग बिन धुरन में झेड़े दौरान जख्मी थियल शख्स फौत। भाई खान चांडियो कराची के अस्पताल में इलाज दौरान जख्म की सट न सहंदे दम दिनों। जत कॉलोनी में मला ए चांडिया बिरादरी के बिन धुरन में झेड़े दौरान जख्मी थो। जख्मी के फौत थे बाद इलाके में पहुंचा है।

कलोई पुलिस मनशात रखने के इल्ज़ाम हेठ गिरफ़्तार नौजवान के आज़ाद कर बजीर बिरादरी के मानून जो धरणो खत्म कराए वरतो। वंगो पतन वट थरकोट रोड से हयल धरने दौरान गालियों कड़ बावजूद मुजाहरीन एहतजाज खत्म करने का जवाब दिनो। पुलिस लियाकत बजीर के आज़ाद कर धरणो खत्म कराया। एहतजाज कदड़ इल्ज़ाम मणीदे तो पुलिस संदन मानून के खंभे कूड़ा केस दाखिल कर रही है।

0: नंगर पार कर भरसा गोठ इस्माइल संग्रासिया में नारी जो खूह मां लाश हथ अड़न वरन जे नारी जो खूह मां लाश मिलो पुलिस पहुंची लाश खणा अस्पताल मुंतकिल करे छड़ो पुलिस जो चवणा ते वाके जो कारण मालूम नाहे थी सके वधिक जांच जारी आहे। नेपाल ऐं चीन जे शहर तिब्बत जे सरहदी इलाइक़े में आयल ओचिते बोर तबाही मचाए छॾी 31 ॼणा फ़ौत 400 सयाह गुम थी विया। नेपाल ऐं चीनी अख़्तियारनि मुतासिर इलाइक़नि में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। बोर जे तेज़ वहिकिरे में केतिरा घर ऐं पुलियूं बि लुड़ी वियूं। तिब्बत ऐं नेपाल जे सरहदी इलाइक़े में ओचितो आयल बोर जा CCTV फुटेजिस बि साम्हूं अची विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इन आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असाजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।
2: या रसूल अल्लाह, गरीब आए हूँ, गुनहगार आए हूँ। या रसूल अल्लाह, तू जा आए हूँ, तुझे नाले ते पंजी ही जान कुर्बान करण वारा आए हूँ। हर साल जिया, इन साल भी मिलाद करण वारा आए हूँ, मिलाद करण वारा आए हूँ।
3: या

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: माता के बच्चे दब जले अभी गायब हुए किसी वाले उन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने जो भी है हमें दो
0: नहीं देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: जाने ही नहीं दे रहा ना ही पुलिस इधर मौके पे थी ना ही तो ये भी दो घंटे बाद आई है। टोटल 31 बच्चे थे जी अभी उनका कंफर्म ही नहीं है ये बता रहे हैं। टोटल 31 बच्चे थे जो इस वार्ड में चिल्ड्रन वार्ड में थे वो सब मासूम बच्चे।
3: जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं।

बाद जी पिम्स अस्पताल जी बारन वाले वार्ड के बाह लगी वही 15 ताजा जावल बार सड़ी फौत एक के बचाए वयो पिम्स जे डायरेक्टर बाह साने में 15 बारन जे फौत थन जी तस्दीक करे छली अस्पताल इंतजामिया मुजिब वार्ड में 16 बार दाखिल हुआ एक बार के बचाए वयो साने में फौत थल 14 बारन जा मर सुजाना बाद वारसन हवाले सड़ी फौत थल बारन जे वारसन जा इंतजामिया ते संगीन इल्जाम वारसन मुजिब बाह पान लगी हा त अमलो बे जख्मी थे हा बाह वक्त बे अमलो बारन के बाहर खड़न बदरा पान भजी वे हो पिम्सान बाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतही इजलास लागापियल ऑफिसर से सख्त कावड़ इजहार सेहत व वफाकी सेक्रेटरी असलम गोरिया के अहदे त हटाए छो साने की जांच लाए आला सतही कमेटी भी कायम अगूणो सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह होंद वाके की शफाफ जांच कर जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत फौती बारन के वारसन से हमदर्दी और दुख जो भी इजहार शहबाज शरीफ चयो त नुकसान जो अजालो नथो करे सकजे कोताही कंदड़न के न छींदी पान के बेहतसाब लाए वजीर आजम आडो पेश कयो आहे ऑक्सीजन सबब बाह जल्द पकड़बी सेहत वाले फाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो आहे त वार्ड में बारन के ऑक्सीजन लगल हुई जैं सबब बाह वधिक भड़की उथी का भी शै लिकी न सकंदी सब कुछ सामूं ईंदो ममलकती वजीर तलाल चौधरी चयो त रेस्क्यू टीमू वाके वारे हंध जल्द पहुंती हुयूं पिम्स के सीसीटीवी फुटेज समेत समूरी शाहिदियूं महफूज कयूं आहिनि जिम्मेवारन के न छॾियो वेंदो पिम्स साने ते समूरो मुल्क रोई रहियो आहे सानिया रोकण लाइ एहतसाब ज़रूरी आहे पिम्स सियासत करण न पर आवाम जा आहंज ॿुधण आया आहियूं पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान चयो आहे त ज़िम्मेवार वज़ीर के पाणी इस्तीफ़ा ॾियणु घुर्जे फायर ब्रिगेड लाइ पिम्स जा दर बंदि हुआ वाटर टैंक्स बि खाली हुआ डॉक्टर्स बि मौजूदु न हुआ आवाम

0: محمد آيو سلي.
1: सिंध समेत समूरी मुल्क में रहमतुल आलमीन खातिम अलंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो जशन अकीदत एहतराम से मल्हायो वियो। ॾींहं जी शुरुआत वफाकी राजधानी में 31 तौबन ऐं सूबन में 21 तौबन की सलामी से कई वही। मस्जिदन में भी खास दुआउन जो इहतमाम मुल्की तरक्की ऐं खुशहाली लाइ खास दुआऊं घुरी वयूं। नंढन वॾनि शहरनि में ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मुहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार कयो वियो। कराची हैदराबाद मीरपुर खास लाड़काणो सखर ऐं शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न जे नंढन वॾनि शहरनि में बि रैलियूं हर तरफ़ नातन ऐं दुरूदन जी बहार। कराची जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रैलियूं कढियूं वयूं। मर्कज़ी रैलीअ में वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं ॿियनि वज़ीरनि जी शिरकत। सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम इंतिहाई सख़्तु रखिया विया।

हैदराबाद डिवीजन में ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रैलियूं ऐं मेड़ा का दादू जामशोरो मटियारी बदीन ठठो सजावल टंडो मोहम्मद खान ऐं टंडे अलियार में रैलियूं कढियूं वयूं। मातली तलार सेवण जोही मेहड़ चंबड़ चूहड़ जमाली सईदाबाद ओडेरो लाल ऐं ॿियनि शहरनि में बि मेड़ा का मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं कढी मेलाद कराया विया। मरहबा या मुस्तफ़ा जा नारा। सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न में ईद मिलादुलनबी सलाहु वसलम जे सिलसिले में रैलियूं हर तरफ़ नातन ऐं दुरूद जो विर्द। घोटकी खैरपुर शिकारपुर जेकबाबाद कंबर शहदाद कोट ऐं कश्मीर ऐं कंदकोट में रैलियूं कढियूं वयूं। रोहिड़ी सालेपट पनवाकिल डहरकी उबावड़ो कोट डिजी गंबट किंगरी ऐं सूबेदेरे में बि रैलियूं। रतोदेरो वारह गढ़ी यासीन तंगवाणी गढ़ खैरो मेरो खान ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढी वयूं। हर पासे मरहबा या मुस्तफ़ा जा नारा। मीरपुर खास ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में बि ॿारहं रबीउल अव्वल जा प्रोग्राम मेलाद जूं महफ़िलूं। उमरकोट थरपारकर सांगण नौशहरो फिरोज़ सकरण मोरो ठारू शाह कंडियारो ऐं काज़ी अहमद में रैलियूं कढियूं वयूं। जुडो डिगड़ी इस्लाम

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारां तहरान जे दौरे बाद अमरीका ऐं ईरान विच में जंगबंदीअ जा इम्कान वधी विया। अमरीका ऐं ईरान नई जंगबंदी ते तफ़ाक़ करे वरितो। कुझु ॾींहं में सरकारी सतह ते ऐलान बि कयो वेंदो, रूसी मीडिया जी दावा। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां फ़ोन ते राब्तो कयो। अब्बास राख़्ची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां खिते जी सूरतहाल ते बि ॻाल्हियूं कयूं। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त असां तकरार जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए चाहियूं था, जंग जीअं मुआशी दबाउ जो बि ॼमी मुक़ाबिलो कंदासीं। मुंहिंजे ख़्याल में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई सख़्त ज़ख़्मी आहे, फ़ौत नाहे थियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जेकॾहिं मुश्तबा ख़ामनाई फ़ौत थियो आहे त ईरानी ज़बरदस्त ड्रामो करे रहिया आहिनि, छाकाणि त हू हतमी मंज़ूरीअ लाइ सुप्रीम लीडर खां इजाज़त वठण जी ॻाल्हि कंदा रहंदा आहिनि। पक आहे त सुप्रीम लीडर ज़ख़्मी आहे।

गाजी अहमद भरसां ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल के टक्कर मासूम भाव ए भेण चिबाट की फौत बजण जख्मी जमाल शाह भरसां हादसे में टिन वरन जो सोहेल डायरी ए संदस भेण छहन वरन की शुमायला हयाती विञाए वेठा अठ वरन की सहाना ए इरफान डायरी जख्मी थी पिया अस्पताल मुंतकिल कलोई पुलिस मंशियात रखने के इल्जाम हेठ गिरफ्तार नौजवान के आजाद कर बजीर बिरादरी के मान जो धरणो खत्म कराए वरतो वंगो पतन वट थरकोल रोड से हयल धरने दौरान गालियों करने बावजूद मुजाहरीन एहतजाज खत्म करने का जवाब दिनो पुलिस लियाकत वजीर के आजाद कर धरणो खत्म करायो एहतजाज कंदड़न इल्जाम मणींदे तो पुलिस संदन मानन के खंबे कूड़ा केस दाखिल कर रही है पुलिस का चवण है तो गिरफ्तार जवाबदार वटा चर्स मिलो हो कें भी बेगुनाह गिरफ्तार न किया हो नंगर पार्कर भरसा गोठ इस्माइल संग्रासी में नारी जो खूह में लाश हथ अड़न वरन की नारी जो खूह में लाश मिलो पुलिस पहुंची लाश अस्पताल खणाए वही पुलिस जो चवण है तो वाक्य जो कारण मालूम ना थी सके हर रुख का जांच की पी वे

0: on, damn it!
1: नेपाल ऐं चीन जे शहर तिब्बत जे सरहदी इलाइक़े में आयल ओचिते ॿोॾि तबाही मचाए छॾी। 95 ॼणा फ़ौत, 403 सयाह गुम थी विया। नेपाल ऐं चीनी अख़्तियारनि मुतासिर इलाइक़नि में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। ॿोॾि जे तेज़ वहिकरे में केतिरा ई घर ऐं पुलियूं बि लुड़ी वियूं। तिब्बत ऐं नेपाल जे सरहदी इलाइक़े में ओचितो आयल ॿोॾि जा CCTV फोटेज बि साम्हूं अची विया। फोटेज में शहरनि खे तफ़री वारे हंध तां पाणी में चाढ़ बाद सयाहनि खे जान बचाइण लाइ भॼंदे ॾिसी सघिजे थो।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: अर्जेंट ब्यूटी क्रीम हर किस्म के स्किन को दे फ्रेश ग्लो और गोरी रंगत। अर्जेंट ब्यूटी क्रीम
0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: अर्जेंट ब्यूटी क्रीम।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हमें क्या पता कि बच्चे 10 जने अब 20 गायब हुए हैं। किसी वजह से इन्होंने डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गया और उस SHO नदीम ने बोला है।
1: ना ही पुलिस इधर मौके पे थी, ना ही वो ये भी 2 दिन के बाद आई। टोटल 31 बच्चे थे,
2: 31 बच्चे थे।
1: अभी उनका कंफर्म ही नहीं है, ये बता रहे हैं। टोटल 31 बच्चे थे जो इस वार्ड में, सेंट्रल वार्ड में थे, वो सब मासूम बच्चे।
3: जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ,

इस्लामाबाद जी पिम्स अस्पताल जे बारन वाले वार्ड के बाह लगी वही 14 ताजा जावल बार सड़ी फौत एक के बचाए वयो पिम्स जे डायरेक्टर बासाने में 14 बारन जे फौत थन जी तस्दीक करे छदी अस्पताल इंतजामिया मुजे वार्ड में 15 बार दाखिल हुआ एक बार के बचाए वयो साने में फौत थल 14 बारन जा मर्द सुजाण बाद वारसन हवाले सड़ी फौत थल बारन जे वारसन जा इंतजामिया ते संगीन इल्जाम वारसन मुजे बाह पान लगे हाथ अमलो बे जख्मी थे हा बाह वक्त बे अमलो बारन के बाहर कढ़ण बदरा पान भजी वयो हो सानेबाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतह इजलास लागापियल ऑफिसर सख्त कावड़ इजहार सेहत वाले फाकी सेक्रेटरी असलम गोरिय के अहदे त हटाए छो साने की जांच ला आला सतह कमेटी भी कायम अगूणो सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह होंद वाक़े की शफाफ जांच कर जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत फौती बारन के वारसन से हमदर्दी दुख जो इजहार शहबाज शरीफ चो तो नुकसान जो अजालो नो कर सकजे कोताही कंदड़न के न छड़ींदासी पान के बेहतसाब लाए वजीर आजम आडो पेश कयो आहे ऑक्सीजन सबब बाह जल्दी पखड़ी सेहत वारे फाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो आहे तो वार्ड में बारन के ऑक्सीजन लगल हुई जैं सबब बाह वधिक भड़की का भी शय लिकी न सगंदी सब कुछ सामूं ईंदो मुमलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो रेस्क्यू टीमू वाके वारे हंध जल्द पहुंतियूं हुयूं पिम्स के सीसीटीवी फुटेज समेत समूरी शाहिदियूं महफूज कयूं वयूं आहिनि जिम्मेवारनि खे न छॾियो वेंदो पिम्स साने ते समूरो मुल्क रोई रो है साना रोकण लाइ एहतसाब जरूरी है पिम्स सियासत करना पर आवाम जा अंज बुधण आया आयूं पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान चयो है तो जिम्मेवार वजीर के पानी इस्तीफा दियण घुर्जे फायर ब्रिगेड लाइ पिम्स जा दर बंद हुआ वाटर टैक्स भी खाली हुआ डॉक्टर भी मौजूद न हुआ आवाम तरफा भी सवाल पुछंदासी सानियो किन पेश आयो पिम्स अस्पताल की इंतजामिया शुरुआती रिपोर्ट तैयार करे वरती रिपोर्ट में चयो वियो आहे त NICU में इनक्यूबेटर सां गॾु ऑक्सीजन वारो नेबोलाइजर्स फाटण सबब ऑक्सीजन में बाह पखड़ी ऑक्सीजन बंद थियण ऐं सड़ण सां ॿारनि जो मौत थियो आहे इस्लामाबाद के फायर ब्रिगेड पिम्स में बाह विसारण वाले इंतजाम के नाकाफी करार दे छो बाह के बचाव वाले इंतजाम से भी सवाल उथारे छा इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड की शुरुआती रिपोर्ट में पिम्स अस्पताल बाबत छिड़काइंदड़ इंकशाफ रिपोर्ट मूजिब अस्पताल के दरवाजन से भी ताला लगल हुआ इमरजेंसी गेट भी मौजूद न हुआ

सिंध समेत समूरी मुल्क में रहमतुल आलमीन खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जो जशन अकीदत एहतराम से मल्हायो वियो। ॾींहं जी शुरुआत वफाकी राजधानी में 31 तौबन सूबन में 21 तौबन की सलामी से कई वही। मस्जिदन में भी खास दुआउन जो इहतमाम मुल्की तरक्की खुशहाली लाइ दुआ घुरी वही। नंढन वॾनि शहरनि में ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहबत अक़ीदत जो इज़हार कयो वियो। कराची हैदराबाद मीरपुर ख़ास लाड़काणो सखर ऐं शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं हर तरफ़ नातनि ऐं दुरूदनि जी बहार कराची जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रैलियूं कढियूं वियूं।

हैदराबाद डिवीजन में ईद मिलादुलनबी जो रैलियों ए मेड़ा का दादू जामशुरो मटियारी बदीन ठठो सजावल टंडो मोहम्मद खान टंडी अलियार में रैलियों मातली तलार सेवण जोही मेहर चंबड़ चूहड़ जमाली बेन शहर में भी रैलियों कड़ी व्यू।

सखन लाड़काने डिवीज़न में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु वसलम के सिलसिले में रैलियूं, हर तरफ नातन दरूद जो विर्द। घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट ए कश्मूर कंदकोट में रैलियूं कटी वयं। रोड़ी, सालेपट, पनो, आकिल, डहरकी, उबाड़ो, कोडिची, गंबट, किंगरी ए बेन शहर में भी रैलियूं कटी वयं। मरहबा या मुस्तफ़ा जा नारा बुलंद।

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां तहरान जे दौरे बाद अमरीका ऐं ईरान विच में जंगबंदीअ जा इम्कान वधी विया। अमरीका ऐं ईरान नई जंगबंदी ते इतफ़ाक़ करे वरितो। कुझु ॾींहनि में सरकारी सतह ते ऐलान कयो वेंदो, रूसी मीडिया जी दावा। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राखची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां फ़ोन ते राब्तो कयो। अब्बास राखची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो त असां तकरार जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए चाहियूं था।

मुझे ख्याल में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सख्त जख्मी है फौत ना थो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चो तो जैसे मुश्तबा खामनाई फौत थो है तो ईरानी जबरदस्त ड्रामो कर रहा है हतमी मंजूरी लाइ सुप्रीम कोर्ट का इजाजत वठण की गाल्ह कंदा रहंदा पक्का है तो सुप्रीम लीडर जख्मी है।

17 ग्रेड नथो घुर्जे सिंध जे 63 सब रजिस्ट्रार तरक्की वठण खां इनकार करे छॾियो। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तरक्की वठण खां इनकारी सब रजिस्ट्रार जी तरक्की न वठण वारी दरख़्वास्त बि क़बूल करे छॾी। तरक्की वठण खां इनकार कंदड़ सब रजिस्ट्रार में आसिफ सरकी, ज़ुल्फ़कार लाखो, अब्दुल नबी लाशारी, जावेद विगियो, आसिफ चांडियो, यासिर शाह, आबिद मरी, तारिक मक्सी, नज़ीर ज़रदारी, इमदाद कुरेशी, मंठार ज़रदारी, नज़ीर उमरानी, गुल हसन लुंड, मुनीर शाह, नूर मोहम्मद जेसर ऐं ॿिया शामिल। सब रजिस्ट्रार 17 स्केल में तरक्की वठण इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन थियण खां इनकार कयो। तरक्कीअ खां इनकारी सब रजिस्ट्रार सालनि खां साॻी हंधि मुक़ररु थियलु।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।